मोहम्मद रफी साहब और उनके साथ कोरस। और पहला मैसेज आ गया है लंदन से, शबीर अहमद सभी को सलाम कहते हैं, दुनिया भर में ईस्ट एफएम सुनने वालों को। चिराग पटेल कहते हैं हाउ वाज योर वीकेंड। और सर जैसे मैंने आपको बताया कि ईस्ट एफएम होस्ट किया था, ईस्ट एफएम ने एक महफिल, आई सी यू ऑल हैड अ लॉट ऑफ फन एट द महफिल नाइट। बिल्कुल चिराग पटेल सच अ सक्सेस। कहते हैं मेरा वीकेंड ठीक था। यस्टरडे आई वाज इन नैरोबी एट गोंग रेस कोर्स फॉर द कोंकोर डालीगॉन्स आई थिंक, वो कार शो। द वेदर वाज ग्रेट, इट वाज सनी, हैड फन विद फैमिली एंड फ्रेंड्स। ये जो कोंकोर है समिन, ये मुकाबला होता है मेरा ख्याल है विंटेज गाड़ियों का, ये यही बात कर रहे थे आप चिराग। और आई एम श्योर यू एंजॉय इट। सना काना थैंक यू। और अब देखते हैं कि रंजन विनोद लंदन से सभी लिसनर्स को विश देम अ गुड मॉर्निंग। जी ठीक है। यहाँ पर हैं एक कहते हैं कि द हैंड्स आस्क्ड द फीट, एवरी वन कीप्स देयर हेड ऑन यू, व्हाई नॉट ऑन मी, द फीट स्माइल्ड एंड रिप्लाइड, फॉर दिस यू हैव टू स्टे कनेक्टेड टू द ग्राउंड, नॉट फ्लाई इन द एयर। बात अच्छे अच्छा जवाब है पैरों का। टू अर्न रिस्पेक्ट, ह्यूमिलिटी एंड स्टेइंग ग्राउंडेड आर एसेंशियल। ये शुभ प्रभात लिखा है, इसका मतलब है कि एमएल विश्वकर्मा का था। अच्छा अब चलते हैं ऑस्ट्रेलिया और वहां पर हैं सोनल। आप सबको विश करती हैं और कहती हैं सभी लिसनर्स होप दे हैड अ हैप्पी वीकेंड। और आगे सोनल के बाद, सोनल थैंक यू, आपके बाद कौन आया है? जी हाँ रूपल आई हैं। कहती है लास्ट वीक ऑफ दिस मंथ ऑन द वीकेंड वी वेंट टू माउंट टैम्बरीन एंड बोटैनिकल गार्डन्स। वाह क्या बात है बहन, बहुत लुक आफ्टर कर रही है। वन लाइन, जाने कैसा है मेरा दीवाना, कभी अपना सा लगे कभी बेगाना। रूपल जब आप अल्फाज लिखती हैं ना, जब बोल लिखती हैं गाने के, हमेशा करेक्ट होते हैं। यहाँ वहाँ खुद नहीं बना लेती, अपने वर्ड्स भी नहीं डाल देती और मिस स्पेल नहीं करती। वेल डन। चंद्रिका वासंत गोसाई ने सबको वेलकम कर दिया है। शोभना ने कहा है हैप्पी मंडे एंड सुपर्बली होस्टेड शो, बेमिसाल, बहुत शुक्रिया। अब देखते हैं नैनो की बात हो रही है,

0: आएंगी वो मालूम नहीं है। वेस्ट इंडीज और इंडिया का वो दिया है पहला मुकाबला, इंडिया ने 8 विकेटों से जीत लिया है।
1: फला आप समझते नहीं है स्वामी दिनेश भट्ट कितना इंटरेस्ट लेते हैं इस खेल में, क्रिकेट में, बजाते खुद वो मैच पूरा देख कर ये आपको जानकारी दे रहे हैं, ये कोई गूगल शुगल का मामला नहीं है, खुद देख कर। और समिन किस कदर जुनून है क्रिकेट का। दिनेश भट्ट हम आपके भारी हैं, बहुत आभारी हैं। और सलमा अहमद ने भी कुछ कहना है और हमने भी कहना है, समिन कोई केमिकल कारखाना हो, फैक्ट्री आपके घर के नज़दीक हो, आपका घर इस फैक्ट्री के करीब है, तो भला आपको क्या दिक्कत है? आप सोचेंगे हो सकता है कि यहाँ से बहुत बुरी स्मेल आती हो, वो तो ठीक है, पर मैं आपको बताऊंगी और क्या खतरे हो सकते हैं अगर आपके घर के नज़दीक कोई केमिकल कारखाना है।
2: ईस्ट एफएम Kenya's premier Asian mix. Bangla Bollywood hits and ballads to sing along with.
3: East FM.
2: Kenya's premier
3: Asian mix. It's 10:19.
4: Listen carefully. You don't want to be the person hearing about this from everyone else's Instagram. Because the R&B royalty, the ladies man, Neo. Coming to Nairobi, Tuesday, 20th of October, Mashujaa Day, Ulinzi Sports Complex. There are also platinum tickets with brunch lounge seating, dedicated brunch service at only 40,000 shillings. Good food, great company, one legendary voice, and you. So don't wait for the pictures, don't wait for the FOMO. Get your ticket now at ticketyetu.com. Neo, live in Nairobi. One night only, R&B Brunch Edition. A Radio Africa Group and Fenin Premium Productions. Powered by Stanbic Bank.
5: The spicy spot on the Kenyan Premier Asian Mix.
6: The sale at Nairobi Sports House is now on. Thousands of items, including sports equipment and clothing, from brands like Adidas, Reebok, Puma, Speedo, and Stiga. Hurry to the sale at Nairobi Sports House while stocks last. Branches in Nairobi, Mombasa, and Nyali. Purchase online for countrywide delivery from NairobiSportsHouse.com. Something for everyone. In the sale at Nairobi Sports House.
2: Back to Kenya's premier Asian mix. East FM.
4: This is East FM, Kenya's premier Asian mix.

0: और समिन केमिकल कारखाने के आसपास रहने वालों को कैसे कैसे खतरे होते हैं दरपेश। सबसे पहला खतरा समिन केमिकल कारखाने के इर्द गिर्द रहने वालों के लिए कैंसर का। जी हाँ, यूके लैंकशायर में समिन केमिकल फैक्ट्री के नज़दीक रहने वालों में ऐसा फॉरएवर केमिकल पाया गया है। इसको फॉरएवर केमिकल कहते हैं क्योंकि ये बरसों रहता है समिन, जो कैंसर का कारण बनता है। उस कारखाने में ये फ्राइंग पैन बनते हैं ना, उनकी जो कोटिंग होती है वो बनाते हैं। PFOA है केमिकल का नाम। तो समिन वो इसमें से निकलता है जब वो फ्राइंग पैन की कोटिंग तैयार कर रहे होते हैं कारखाने में, फैक्ट्री में। तो ये केमिकल हवा में फैलता है। ये पाया गया PFOA केमिकल मिट्टी में, अंडों में, फलों में, सब्जियों में, ये खतरनाक केमिकल पाया गया है। अब क्या करें, या तो आबादी निकल जाए वहाँ से तो या कारखाना बंद कर दें समझ, लेकिन कुछ तो करेंगे। पर इतने बरसों से ये काम होता आ रहा है ना। बिल्कुल, अब क्या है सुनते हैं।
1: गुड न्यूज फॉर बेमिसाल अंदाज लिसनर्स, आई हैव जस्ट डिपॉजिटेड हग्स, स्माइल्स, लैफ्टर, लव, हैप्पीनेस, केयर एंड ब्लेसिंग्स इनटू योर अकाउंट to be used with no limits, PIN forever. Good morning, Salma Ahmed, Kisumu.
0: Salma ne hume kitni duaein bhej di hain, mere khate mein hain, aapke khate mein hain. Aap jab chahe inko istemal karein. Thank you. Rasila, true spirituality is not measured by how much you pray or fast. It is how you treat others. Your kindness, compassion and actions reveal the true condition of the heart. बहुत खूब। और यहाँ पर है कल्पना, कहती है, the weather is so good and romantic today. I had once told my husband that a nice drizzly or rainy weather calls for bhajans. It's a little Mumbai style. Bhajias, not bhajans. Bhajias. Now, whenever it starts raining, my husband says, are we making bhajias today? ये गलती की है आपने। Sometimes, even before he asked me, I said, no bhajias today. अच्छा, मुझे पहले लगा no bhajans today. मैंने कहा, कैसे कह सकती हैं कल्पना, no bhajans. It was bhajias. No bhajias today. ML Vishwakarma. Dual fuel liquid natural gas railway train. Dual fuel liquid natural gas railway train. After launching its first hydrogen powered train in July, Indian Railways has now introduced its first LNG powered train. Bahut tarakki kar raha hai Bharat. The LNG diesel dual fuel train is aimed at reducing diesel use, fuel costs and emissions. Bahut khoob, ye to bahut बढ़िया काम कर रहा है इंडिया।
2: रोहन जी, एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, ये गाना फिल्म गबन का है, 1967 की मूवी है, जिसको मोहम्मद रफी ने गाया है और जिसको हसरत जयपुरी ने लिखा है और जिसकी धुन सक्का जय किशन ने बनाई है। ये गाना अच्छा लगा सुनाने के लिए आपका शुक्रिया।

ये तो मेरी पूजा हो beautifully written है समिन, और आगे मैंने आपको जो पूछना है बड़ा अजीब अजीब बात है जो पूछनी है आपको। सोनल आपने गुड मॉर्निंग कह दिया सभी को, और प्लीज बेमिसाल में अपने एडवर्टाइजमेंट मत करें। अगर आपकी कोई आपका कोई स्कूल है तो मुफ्त की एडवर्टाइजमेंट नहीं, आप हमारी सेल्स टीम के साथ बात कर सकते हैं रादर देन सेंडिंग मी मैसेजेस। मैं नहीं पढ़ सकूंगी आपके मैसेजेस ना। उमर हैं दुबई में और आज अच्छी है उनकी तबीयत, उन्होंने कहा गुड मॉर्निंग टू यू ऑल लवली लिसनर्स। उमर की जानिब से गॉड ब्लेस यू ऑल। समय पहले भी जब आप जर्मनी थे तब भी आप मैसेज किया करते थे उमर, और वहाँ पर भी सुनते थे, तो आज भी किया, तो उनके लिए ज़रूर दुआ करते रहें।

0: परवीन बट बहुत शुक्रिया आपका. विमल चड्डा ने भी अपना मैसेज भेजा था और समिन क्या कहा है जनाब विमल चड्डा ने. आजकल वो रोज़ाना के मैसेज भेजते हैं और कहते हैं कि दोज पीपल आर ऑफन लेफ्ट अलोन हु केयर अबाउट अदर्स मोर देन देमसेल्व्स. दे थिंक अबाउट एवरीवन, हेल्प एवरीवन एंड पुट अदर्स बिफोर देमसेल्व्स. इन द एंड दे स्टैंड अलोन. विमल बिल्कुल सही. और समय विमल चड्डा के बाद हर्षा शिकोत्रा, आपने कहा है कि पता है क्या, मेरी बहन जो नॉर्वे में रहती है और आपकी लिसनर है जयश्री शिकोत्रा. समय जब भी वो ट्रैवल करते हैं, वैसे भी हमारा प्रोग्राम रोज़ाना सुनते हो, जब ट्रैवल करते हैं तो हमें बताते हैं कहाँ कहाँ पर ईस्ट FM सुन रहे हैं. कमाल है. तो जयश्री बहुत बहुत सालगिरह मुबारक हो. तमाम अपनी बहनों की जानिब से भी वॉम वॉम विशेस भेजी हैं उन्होंने और सदा सलामत रहो दुआ की है. और ईस्ट FM की पूरी टीम जयश्री शिकोत्रा को यही ग्रीटिंग देती है, मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे. और साथ साथ समिन सवानी ब्रदर्स का प्रोग्राम आ रहा है 3 अक्टूबर, यानी आते शनिचरवार. सुहाना सफ़र नाम है. बॉलीवुड के आपको क्लासिकल यादगार नगमे हिट सॉन्ग्स जो हैं इस फिल्मी दुनिया के आपको सुनाए जाएंगे. रूह को खुश करने वाली जो गजल्स हैं, स्पिरिचुअल गजल्स लेकर आ रहे हैं मेहुल और शैलेश सवानी. कहाँ पर? जैन भवन के ऑडिटोरियम में, समिल लोरेशो में. आपको बहुत ही अच्छा लगेगा. उसके बाद फिर रिफ्रेशमेंट भी होंगी. आपने बुक कर लेना है अपना टिकट www.justbookaticket.com पर. justbookaticket.com. ठीक है, आप ये कर लें, फिर हम आगे बढ़ेंगे क्योंकि आगे इंतज़ार कर रहे हैं. पिंग पिंग.
1: No one plays more of the beats you dance to but East FM. Kenya's premier Asian mix. No one plays more of your Bollywood favorite.

0: कभी के संगीत प्रेमी तैयार हो जाएं, दिलकश गजलें, रुमानी धुनें, दिल को छूने वाले सुरों की शाम के लिए मेहुल और शैलेश लेकर आ रहे हैं सुहाना सफर, एक शानदार महफिल पुराने बॉलीवुड के यादगार नगमों के साथ। 3 अक्टूबर शाम 6 बजे जैन भवन लोरेशो के ऑडिटोरियम में जाने माने साजिंदे मेहुल सवानी और शैलेश सवानी का साथ देंगे। याद रहे 3 अक्टूबर सुहाना सफर, और फौरन अपने टिकट्स बुक करें ऑनलाइन www.justbookaticket.com पर।
1: Kenya's premier Asian mix means always playing the very best.
2: East FM.
1: East FM. East FM.

बिल्कुल ज्योति फ्रॉम डोइरू, ये मुझे लगता है वही था जो आपने रिक्वेस्ट किया था। समय पिंग पिंग एक साथी के संग लंबे सफर पर निकला है कल इतवार के दिन। पिंग पिंग जब इनको लेकर ट्रक हवाई अड्डे की तरफ जा रहा था तो प्लेकार्ड्स लेकर शहरियों ने इनको बाय किया, फैंस इकट्ठे हो गए। और समय 15 घंटे का सफर है। पिंग पिंग क्या सफर है ये, क्या मंजिल कहाँ है और मकसद क्या है और पिंग पिंग कौन है? ये तमाम सवालों के जवाब आप मुझे देंगे 0701 106 106। और समय एक ये भी फरमाइश आई है कि लता मंगेशकर की आज बर्थडे है तो ये गाना सुनेंगे विनीत।

0: देखते हैं टुडे इन हिस्ट्री क्या कहा है यासर ने, आज क्या क्या हुआ तारीख में। कहते हैं 1912 द मुथाइगा कंट्री क्लब वाज ऑफिशियली एस्टेब्लिश्ड इन नैरोबी ऑन सितंबर 28, 1912, ग्रोइंग इनटू अ फेमस सोशल लैंडमार्क। जी मुथाइगा क्लब की तो बहुत कॉलोनियल हिस्ट्री है, गोरे ही आया करते थे समिन यहाँ पर, कोई एशियाई या यहाँ के बाशिंदे नहीं जाते थे। 1956 किरण शाह द वर्ल्ड शॉर्टेस्ट स्टंट मैन एंड एक्टर वाज बोर्न इन नैरोबी। अच्छा, वर्ल्ड शॉर्टेस्ट स्टंट मैन, समिन वो जो स्टंट्स करते हैं फिल्मों में, जब हीरो कोई मुश्किल काम नहीं कर सकता, कोई करतब नहीं दिखा सकता, तो फिर स्टंट मैन करता है। ही वॉज अ रिनाउंड एक्टर इन गिनिस वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डिंग स्टंट मैन, वर्किंग ऑन मेजर ब्लॉकबस्टर्स लाइक द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स, स्टार वॉर्स एंड टाइटैनिक। अच्छा, किरण शाह, समझ हमने तो 1956 में था। बहुत अच्छे यासर, ये तो बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। 1970 गमाल अब्दुल नासर डाइड ऑफ अ सडन हार्ट अटैक, सेकेंड प्रेजिडेंट ऑफ इजिप्ट and a leading figure in Arab nationalism. Ji Abdul Nasser, 1970. Ab birth anniversary Lata Mangeshkar ki bhi hai. 1929, the Nightingale of India and Bharat Ratna recipient was born on this day in Indore, district of Madhya Pradesh. Bahut khoob, thank you.
1: East FM. Celebrating your favorite occasion. East FM.
2: Kenya's premier
1: Asian mix.
2: Asian mix. It's 11. 13.
3: Find trusted world-class healthcare right in your neighborhood. Aga Khan University Hospital is bringing specialized care closer to home with convenient clinics at Peponi, Muthiti, Rapta Road, Mountain View and our new executive center in Gigiri. From cardiologists, pediatricians and gynecologists to full diagnostic labs, pharmacies and even home care services, we've got your whole family covered. Book your appointment today. Call 0730-011-888. Aga Khan University Hospital. World-class care, here and now.
4: The spicy spot on the Kenyan Premier Asian Mix.
5: The sale at Nairobi Sports House is now on. Thousands of items, including sports equipment and clothing, from brands like Adidas, Reebok, Puma, Speedo, and Stiga. Hurry to the sale at Nairobi Sports House while stocks last. Branches in Nairobi, Mombasa, and Nyali. Purchase online for countrywide delivery from NairobiSportsHouse.com. Something for everyone. In the sale at Nairobi Sports House.
6: More of Kenya's premier Asian mix. East FM.
7: East FM. Kenya's premier Asian mix.

0: गाना तो बनता ही है एंड यू वांटेड टू डेडिकेट दिस सॉन्ग फॉर मी. दैट इज सो स्वीट. आई ट्रूली अप्रिशिएट यू एज वेल सेइंग योर आउटफिट लुक्स गुड. यू सच अ गुड स्पिरिट टू सी एवरीवन डांसिंग. एंजॉयड ब्यूटिफुल टीम वर्क. यस, टीम वर्क डज मेक अ ड्रीम वर्क एज दे से. एक अकेला आदमी सब कुछ नहीं कर सकता. वी ट्राई टू डू थिंग्स बाय अरसेल्फ बट वेन यू हैव दैट लव एंड सपोर्ट यू कैन डू वंडर्स. आई गॉट अ लॉट ऑफ मैसेजेस. Rosina saying, my both daughters appreciated every time for everything that makes me feel so good. My younger one daughter, Azra, till now appreciates for her education, for good school, for university, for everything. My elder daughter, Amira, always appreciates me. I'm truly blessed. Shukar Alhamdulillah. And that is so good. That is because you have given them that upbringing. You've taught them that it's important to appreciate every little. And you know, they say the more grateful you are, the more appreciative you are, the more God gives you. I've got a message here from Kruti saying, when my mom thanked me for something I do every day, it made me realize she notices more than I think. You're truly blessed to have a mom like that, Kruti, I must say. I've got a message here, you haven't mentioned your name, saying, my partner surprised me with my favorite food after a really difficult day. I'm so appreciative that he kind of knew that I'm not feeling good, I'm not having a good day, and a good food, my favorite food, will definitely make me happy. So you are blessed to have a partner like that who understands you at that level even after you guys have been married for such a long time. This is wonderful. You know, jahan pe aapka bharosa uth jata hai, pyar aur relationship, things like this gives you that good things happen, good people are there. I've got another message from Meera saying, honestly, today my friend, colleague noticed I wasn't myself and checked on me without me saying anything. This is so beautiful and so wonderful. How it makes you happy. This is something so small and yet so big. Sonal saying, it's your husband's birthday today as well. Kya baat hai aaj, itne sare birthday. Ranbir Kapoor ka birthday, mere nephew Yusuf ka bhi birthday hai aaj. So wishing Yusuf, he's all the way in Mumbai, a very happy birthday from me and everyone here. And he's a beautiful, beautiful child. He's like my son and he loves me a lot. He calls me Badi Mama and I truly miss him and love him so, so much. And yes, Sonal, happy birthday to your husband as well. And he's a wonderful human. I met him in Mombasa last year when I came for the event. And you two really compliment each other. So wishing him happy birthday from me and the team of East FM.
1: East FM. Every brand has a story. The big idea. The exciting new product. The offer your customers will love. The service you've worked hard to build. And when you've got something this good, why not give it a bigger stage? Give your brand the kind of exposure that gets remembered with East FM. Whether you're launching, promoting, growing, or celebrating a new milestone, we'll help you turn your message into something people remember. Advertise with Radio Africa Group. Whether you'd like to advertise on the Star, our digital platforms including Mpasho, and even on air with East FM, call us on 0711-046-200 or email sales@radioafricagroup.co.ke. Your brand has a story. Let's give it the audience it deserves on East FM.
2: With news from Kenya, Asia and around the world, this is East FM News, presented by Parveen Adam.
3: सोमवार ईस्ट एफएम पे दिन की अहम खबरें. पहले खबरों की सुर्खियां. सबोटी एमपी का पैगाम रिगाथी गशागवा के लिए. स्कूल हेड्स को हुक्म पार्लियामेंट की कमेटी में पेश होने का. आयरलैंड के खिलाड़ियों का फलस्तीनियों के पक्ष में खेल. और साउथ अफ्रीका में 30 का खून. खबरें तफसील से. सबोटी के पार्लियामेंट के रुकन कालिब अमीसी ने कहा है, आप रिगाथी गशागवा की हिमायत करेंगे आते चुनाव के लिए अगर वो सेनेटर एडविन सिफुना का साथ देते हैं. मगर गशागवा की सियासत के मुतालिक ये कह दिया कि आप कबीला परस्ती करते हैं. 6 कौमी स्कूलों के हेड्स को पब्लिक इन्वेस्टमेंट कमेटी के सामने पेश होना पड़ेगा. ऑडिट के सवालात किए जाएंगे. मोई फोर्सेस, प्रेशस ब्लड, नियरी हाई और कहुया गर्ल्स स्कूल इनमें शामिल हैं. एक्स्ट्रा लेवीज और कर्जा लेने पर मुकम्मल जानकारी तलब की जाएगी. आलमी खबरें. साउथ अफ्रीका के शहर केप टाउन में एंटरटेनमेंट वेन्यू के बाहर 10 अफराद को कत्ल कर दिया, 11 को जख्मी. इस तरह के वाकयात में 17 को जोहनिसबर्ग के शराब खाने में मार दिया गया। साउथ अफ्रीका सख्त मुश्किल हालात से गुजर रहा है। जराइम पेशा टोलियों के हमले रोकने में हुकूमत नाकाम है। अब तक इतवार की वारदात के मुलजमान पकड़े नहीं गए। रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड के खिलाड़ियों ने इसराइल की टीम के खिलाफ लीग ऑफ नेशंस मैच खेला, मगर बाजुओं पे काली पट्टियां बांधकर। हंगरी में होने वाले मैच में आयरिश खिलाड़ियों ने इसराइल का विरोध किया गजा में हुए कत्लेआम के लिए। इसराइल गजा युद्ध के बायस आयरलैंड के पास एक रास्ता था कि गेम ना खेलें, मगर फिर तय हुआ कि मैच में हिस्सा ले लेंगे। पोप लियो द 14 ने पेरिस में अपने दौरे का आखिरी खिताब किया है। कैथलिक्स ने 7 लाख की तादाद में ओपन एयर मास में शिरकत की। शांज़लीज़े एवेन्यू पे फ्रेंच आबादी ने वालेहाना इस्तकबाल किया पोप का। पोप लियो ने जवानों की तारीफ की जो ईसाई कैथलिक मजहब को तवानाई देते हैं। टेनेसी रियासत में क्रिस्टा पाइक को जहर का टीका देकर उसकी जान ली जाएगी। तारीख बनेगी इस सजा से। पाइक पहली महिला होंगी लीथल इंजेक्शन से एग्जीक्यूट होने वाली टेनेसी में 200 बरसों में। खौफनाक कत्ल किया था इसने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर। कई वजूहात दी गई इनकी सजा को रोकने के लिए। सर्बिया के राष्ट्रपति ने इस्तीफा दे दिया है 1 साल चलने वाली आपके खिलाफ मुहिम के बाद। जवान सर्बियन सड़कों पर जुलूस निकालते रहे हुकूमत की रिश्वत खोरी की वजह से। अलेक्सांडर वुचिच 9 साल इक्तदार में रहे, अब नए चुनाव का रास्ता खुल जाएगा। ये थी आज की खबरें। मैं हूं परवीन आदम।
4: We're deep in the groove now. Retro feels blending perfectly with today's hottest hits. This is Retro to Right Now with Nilufar.
0: All right, we are already in the second hour of the show. Time is flying. Time kya din, mahine, saal guzarte jayenge. Aise guzra ye saal ke kuch pata hi nahi chala. Already we are heading towards new year. But anyways, aapka aur mera saath hai yahan pe, and that is important. Right up till 4 p.m. This is Retro to Right Now with Nilufar, and starting off with Mohit Chauhan and a wonderful teamwork, as say teamwork does dream work. And we are going to celebrate Ranbir's birthday during the course of the show. So this is from Rockstar, one of his most iconic films as in his career as an actor. I think he was truly, truly remarkable. Yeah, let's enjoy this song. It's coming up next.